नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक

0: सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री को भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में है। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 तक की स्थिति समीक्षा के अनुसार इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जीवित चीते और उनकी संतानों के साथ बोत्सवाना से हाल में लाए गए चीते भी शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is...

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पद यात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करनालोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
4: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
5: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
4: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के MSME क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
6: हाल राजकोट MSME उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
4: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000

0: रुपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द है। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्युरेट सेमिकॉन इंडिया 2026 एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. US Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. U.S. House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international between India and Afghanistan to be played in Delhi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. More from our correspondent.
3: The conference will focus on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Parallel sessions will cover advancements in the display industry, 6-country roundtables are designed to facilitate collaboration and joint ventures, a forum on women's leadership, among other sessions. Semicon India 2026 will adopt a comprehensive value chain approach, showcasing the journey from semiconductor materials, equipment and chip design to fabrication, advanced packaging, electronics and systems. It will feature more than 600 participating companies and is expected to attract around 50,000 visitors with representatives from 52 countries, more than 400 executives and over 150 speakers. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years in public service as a head of government. This includes his 13 years as Chief Minister of Gujarat and 12 years as Prime Minister of India. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown, Vadnagar.

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम योजना अन्तर्गत विविध हिन्दी फिल्मी गीतहरू साथै आज

0: श्रोताहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ आकाशवाणी खरसाङ केन्द्रबाट 103.5 मेगाहर्जको तरङ्गमा। र अब समय भएको छ समाचारको, त केही बेरमै समा प्रसारण गरी सुनाइरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दीमा समाचार।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक,

0: 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के 6 पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक, इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थलों और पर्यटक केंद्र समुद्र तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के अवसर पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सरकार ने सोशल मीडिया पर जारी उस भ्रामक सूचना का सिरे से खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद कुछ वैश्विक नेता बीमार पड़ गए थे। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेम सेल थेरेपी के विनियमन से संबंध में परामर्श जारी किया है। इस संबंध में दिशा निर्देश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से जारी किए। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: स्वागत श्रोता, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई आकाशवाणी खरसाङ 103.5 मेगाहर्जको तरंगमा। साथै श्रोताहरूले हामीलाई दार्जीलिङ एफएम 100.2 मेगाहर्ज अनि मोबाइल एप न्यूज अन एआईआरबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। र अबको क्रममा स्वर माधुरीमा सुनाइरहेछौ आधुनिक गीतहरूको प्रस्तुति।

0: अबसम्म प्रसारण गरी सुनाइरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दीमा समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 में ये बात कही।
2: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
1: इस अवसर पर श्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि निर्माण और आत्मनिर्भरता हमारी परंपरा में शामिल रहा है।
2: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है।

0: एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
1: सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन के 6 स्तंभों के बारे में जानकारी दी।
2: सेमिकॉन 2.0 विल बिल्ड द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवर 6 पिलर्स। पिलर नंबर 1 इज डिजाइन, द पिलर नंबर 2 इज मशीन्स एंड मटेरियल्स, पिलर 3 विल बी मोर डिस्प्ले मेमोरी सिलिकॉन कंपाउंड एंड लॉजिक फैब्स, पिलर 4 विल बी मोर एडवांस्ड पैकेजिंग यूनिट्स, पिलर 5 विल बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द पिलर 6 इज अबाउट टैलेंट।
1: 3 दिन का ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक, इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एस सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहिर, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बंगाल रोड जोगीहाटबाट सौम्या नाजबिन, रुकैया, रिहाना, फरजाना, सहाना, जुबेदा अनि अवैदा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलियाबाट ओम प्रकाश राई, उषा राई, कुमार अनि ह्याप्पी। दुविधा नेवादा गाजीपुरबाट प्रतीक राई, रोशनी, प्राञ्जल अनि शेरपुर कला गाजीपुरबाट अवधेश राई, प्रीति अनि नवनीत। त यहाँहरूको अनुरोधमा कार्यक्रम के हो यो पहिलो गीत सुनौँ।

0: He said the video is fake and being circulated by the Pakistani propaganda accounts. It said the footage in the claim is from a video game. The fact-check unit has urged people to report any suspicious content related to the central government at factcheck@pib.gov.in. Director General of News Services Division, Akashvani, Rajiv Kumar Jain, administered the Swachhata Pledge to officers and staff at the premises of Akashvani in New Delhi today. Additional Director General News, S. Subramanian, was also present on the occasion. The pledge was administered as part of the ongoing Swachhata Hi Seva 2026 campaign, being observed across the country from today till the 2nd of next month. In men's cricket, India will play the final match of the three-match T20 international series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. At the stock markets, the Sensex was trading nearly flat while the Nifty was trading moderately higher during the afternoon session today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates SEMICON India 2026 in New Delhi, says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnav says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
2: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
3: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: 2 PM समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा की 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
2: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क राबते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
6: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खावो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
5: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके

0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
2: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूलकिट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
3: Draining this swamp that provided an
4: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने

0: के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को ना खोए।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: स्वागत छ श्रोता एफएम 103.5 मेगाहर्ज आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण सेवामा। म कार्यक्रम सहयात्री अनुपमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित छु विविध प्रस्तुतिहरू लिएर। राबको क्रममा सुनाइरहेछौँ आधुनिक गीतहरूको प्रस्तुति। प्रथममा स्वीकार्नुहोस् राजेन आलेको स्वर शब्दनी संगीतमा रहेको यस गीतलाई।

0: विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने कहा कि एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत पर वैश्विक भरोसा भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को याद करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित
2: श्रोताले आकाशवाणी को खरसाङ केन्द्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ विशेष फौजी श्रोताहरुको निम्ति प्रस्तुत कार्यक्रम जय जवान अन्तर्गत केही चलचित्रका गीतहरू।

श्रोतारे प्रसारण हो आकाशवाणी खरसांग को विशेष फौजी श्रोतार का निम्ति कार्यक्रम जय जवान अंतर्गत के ही चलचित्र का गीत रू।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: नमस्कार श्रोता, आकाशवाणी गान्तोकबाट प्रसार हुने भारत सरकारको कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालयद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान बाणीमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट हजुरहरूलाई स्वागत तथा न्यानो अभिवादन जनाउँदै आज हामी किसान बाणीमा एक अति नै प्रगतिशील कृषकसँग कुराकानी गरेर उहाँको अनुभवहरू हजुरहरू समक्ष साझा गराउन गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो अन्तर्वार्तालाई अघि बढाउँदै उहाँसँगै कुरा गरौँ। सर्वप्रथम त हजुरलाई हाम्रो आकाशवाणी गान्तोकको किसान बाणी कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदछु।
6: हजुर नमस्कार।
5: हजुरले आफ्नो परिचय हाम्रा श्रोताहरू माझ राखिदिनुहोस्।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: यो कार्यक्रम को प्रायोजक रहेको थियो कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: प्रादेशिक समाचार वंदना राय पाठक सुन्नहोस्।

0: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे

0: आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
1: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
0: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
1: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
0: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
1: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
0: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
1: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
0: आइए सेवा के संकल्प से जुड़ें, देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
1: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।

0: विमान र एचटिटी 40 बेसिक ट्रेडर विमान हस्तान्तरण गर्नेछ। यस अवसरमा कम्पनीले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पवन हन्स लिमिटेडलाई दुब्र नेक्स्ट जेनेरेसन हेलिकप्टर पनि हस्तान्तरण गर्नेछ। समारोहमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र नागरिक उड्डयन मन्त्री राममोहन नायडू उपस्थित हुनुहुनेछ। रक्षा मन्त्रालयका अनुसार यी विमान तथा हेलिकप्टरलाई सेवामा समावेश गर्नु स्वदेशी क्षमता सुदृढ पार्ने र विदेशी स्रोतमा रहेको निर्भरता कम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो। मन्त्रालयले एयरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्रमा स्वदेशी डिजाइन, विकास र उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। विदेश मन्त्री डाक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरले आज भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे र विदेश मन्त्री डीएन ढुङ्गेलसित मिलेर भारत भ्रमण गर्ने भुटानी नागरिकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युपीआईको दोस्रो चरण शुभारम्भ गर्नुभयो। डाक्टर जयशंकरले भुटानमा युपीआई कारोबार शुरू भएसँगै भारत र भुटान बीच युपीआईमा आधारित डिजिटल भुक्तानी सम्पर्क पूर्ण भएको बताउनुभयो। यस अवसरमा भारतीय संस्थानमा भुटानी विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि नेहरू वाङचुक छात्रवृत्ति योजना विस्तार गर्ने सम्झौता पनि भएको छ। डाक्टर जयशंकरले यसलाई शिक्षा र क्षमता विकासका क्षेत्रमा भारत भुटान सहकार्यको महत्वपूर्ण पहल बताउनुभयो। विदेश मन्त्री डाक्टर जयशंकरले भुटानका प्रधानमन्त्रीलाई भारतमा निर्मित 54 विद्युतीय वाहन पनि हस्तान्तरण गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय यातायात र दिगो परिवहनको दिशामा भुटानको प्रगतिमा भारतले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जन्मदिनमा आज विश्वभरिबाट शुभकामना र बधाई आइरहेछन्। उहाँले सोसल मिडियामा यस शुभकामनाप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस्ता आशीर्वादले आफ्नो हृदयमा विशेष स्थान राख्नका साथै प्रत्येक आशीर्वादले देशका जनताको सेवा गर्नका लागि आफ्नो संकल्पलाई अधिक दृढ बनाउँदछ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सोसल मिडिया अकाउन्टमा अमन पन्तद्वारा रचित आशीर्वादका दिया गीत पुनः साझा गर्नुभएको छ। भारतको वस्त्र निर्यात यस वर्ष अगस्तमा बढेर 29,700 करोड रुपियाँ भन्दा अधिक भएको छ। गत वर्ष अगस्तमा यो 25,600 करोड रुपियाँ भन्दा अधिक थियो। वस्त्र मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष अगस्त महिनाको तुलनामा निर्यातमा 16.1% वृद्धि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2026 अप्रेलदेखि अगस्तसम्म भारतको कुल वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड रुपियाँ भन्दा अधिक पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 10.3% अधिक हो। मन्त्रालयले प्रमुख क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको वृद्धिले भारतीय वस्त्र निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र विविधीकरण बढ्दै गएको देखाएको जनाएको छ। अन्तमा प्रमुख समाचार पुनः एकपल्ट। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, भारत विश्वको भरपर्दो र तयार उत्पादन केन्द्रको दिशामा अघि बढिरहेछ। पृथ्वी विज्ञान मन्त्रीले भन्नुभयो, भारतमा डप्लर मौसम रडार 14 बढेर 51 पुगेको छ। कृषि मन्त्रीको विकसित भारत ग्रामजी योजनाले विकसित गाउँ निर्माणमा पुर्याउन सक्ने योगदानको अध्ययन गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देश। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई गरिने युपिआई कारोबार निशुल्क रहने अनि राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आजदेखि सुरु। समाचार पूरा भयो।
1: আন্তর্জাতিক ইউপিআই ব্যবস্থাপনা সূচনা হয়েছে। কয়লা মন্ত্রক আজ নতুন দিল্লিতে বাণিজ্যিকভাবে 16 কয়লা খনি নিলামের সূচনা করেছে। তৃতীয় টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচে আজ আফগানিস্তান টসে জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়েছে। আসছে বিস্তারিত খবরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, উৎপাদন ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্ব এক নতুন এবং বিশ্বস্ত গন্তব্যের সন্ধানে রয়েছে। সেই প্রয়োজন মেটাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছে ভারত। নতুন দিল্লির যশোভূমিতে সেমিকন ইন্ডিয়া 2026 উদ্বোধন করে কিভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চাহিদার বিস্ফোরণ ঘটছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, একদিকে ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে ভারতের প্রতি আস্থাও বাড়ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা সত্ত্বেও ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশ 7.8% রেকর্ড করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।
2: इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 के बाद करीब 35 के बाद हुआ है।
1: কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন সক্ষমতা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেমিকনের আওতায় সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।

0: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0।
1: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार है। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
0: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
4: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
2: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
4: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत

0: संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
2: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता, बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
1: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें

0: ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत दो मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the scent. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the fifth edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी। इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी। अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की। और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चीप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है। और अभी अभी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Mr. Modi said the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion US dollars from $8 billion.

0: countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
2: नमस्कार। स्वच्छ भारत में जन भागीदारी, राष्ट्रव्यापी देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत आज हुई है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आज देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये कितना बड़ा अभियान मानते हैं, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका समापन होगा। इसके क्या मायने हैं और आम लोगों के लिए ये किस तरीके से आंका जा सकता है?
3: यह अच्छी बात है कि इस साल फिर एक बार स्वच्छता ही सेवा हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत आज नहीं है। 2014 में लाल किला की प्राचीर के ऊपर से उस टाइम नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को आह्वान दिया था और उस टाइम लोगों को चौंका दिया था कि हमें देश को स्वच्छ करना चाहिए, हमारे आदत बदलना चाहिए और हमारे जो बहन माँ और जो भी महिलाएं हैं उनकी डिग्निटी और सिक्योरिटी के खातिर, बीमारी से बचने के खातिर देश को स्वच्छ करना अति आवश्यक है और इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। तो 14 से लेकर अभी तक 26 तक 12 साल हो गया ये आंदोलन चलता आ रहा है और ये पहले ऐसा कभी नहीं था। और मैं अगर कह सकता हूँ कि हमारे भारत की जो आजादी की लड़ाई है उस टाइम जो आंदोलन था उसके बाद अगर एक सचमुच के एक जन आंदोलन हुआ है तो मैं स्वच्छ भारत का मानूंगा। और प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में एक बहुत बड़ा चीज शुरू हुआ जो आज तक निरंतर चल रहा है, उसका नाम स्वच्छता ही सेवा, और वो आज 17 सितंबर को शुरू होता है। पहले 2 पक्ष के लिए हुआ करता था, जैसे कि स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है उस दिन उसका कंप्लीशन हुआ करता था, अभी इस बार 1 महीना है। लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो है कि ये जो स्वच्छता है या देश को स्वच्छ करने का जो मुहिम है ये जनता की है। जैसे गांधी जी ने बोला था कि भाई अपने हाथ में झाड़ू पकड़ोगे तब अपना आंगन और बाहर देश साफ होगा, ऐसे ही एक अंदर में इंसान और सारे सिटीजन सबका अंदर में एक निर्णय है कि हम खुद अपना आंगन, अपना जो बाहर गली सड़क और पब्लिक प्लेसेस सारे जगह स्कूल मोहल्ला सब कुछ साफ करेंगे, हम खुद ही साफ करेंगे सब मिलके। ये 1 महीना खास करके आज से लेके तो ये स्वच्छता ही सेवा अपने जो श्रमदान करेंगे और जगह जगह सफाई करेंगे कि मिसाल करेंगे, इसमें एक जोश आएगा। अपना स्वच्छता जो कार्यक्रम है जैसे कि 12 करोड़ शौचालय बने 2014 से लेकर आज तक, और घर घर से वेस्ट मैनेजमेंट का सारे घरों की कचरा जो है रोज आते हैं, गाड़ियां आके घर से कलेक्शन होते हैं, वेस्ट रिकवरी और वेस्ट प्रोसेसिंग का बहुत कैपेसिटी बढ़ा है, बाहर जो कूड़े का शहरों की बाहर जो लैंडफिल बोलते हैं उसका संख्या भी कम हो रहा है, बहुत सारी चीज हो रहा है। लेकिन ये जो बात है स्वच्छता ही सेवा की जो 1 महीना है ये लोगों की कार्यक्रम, इसको दिखाने के लिए लोग खुद आकर बाहर साफ करेंगे वही चल रहा है और 17 से शुरू हुआ था, बहुत सफल रहा है। इसमें करोड़ों लोग हर साल जुड़ते हैं और भी होता है तरह तरह के समय में, कभी 1 हफ्ता कभी 2 दिन कभी कोई एक फंक्शन है सेरेमनी है या कोई ओकेजन है उसमें भी होता है, और से बड़ी और कंसंट्रेटेड फोकस तरीके से अगर कभी होता है। और इसमें स्वच्छ भारत मिशन के जो 2 मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय एक शहरी और आवास जो मंत्रालय है, उनमें से स्वच्छ भारत मिशन के जो रूरल और अर्बन दोनों पक्ष मिलके इसमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में काम है, लोग साफ सफाई करते हैं, सब जुड़ते हैं और एक सेवा मनोभाव से करते हैं और एक आंदोलन के तरीके से करते हैं।
2: इसमें जन भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, जागरूकता किस तरह से फैलाई जा सकती है और जागरूकता को सारी जनता आम तौर पे खुद से अपनाए,

0: उसके लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार कितनी सफल हो पाई है इसमें?
1: इसमें सफलता तो आप अगर पहली फेज में माने, जैसे कि 14 से 19 पहला फेज था और 19 से 26 जो है इस साल तक दूसरा फेज है स्वच्छ भारत मिशन का, पहला फेज में तो लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त था। उस टाइम मैं सोचता हूँ कि फेज टू जो खत्म होने वाला है और फेज थ्री जो आने वाला है, ये जन भागीदारी को और थोड़ा बढ़ाने की स्कोप है, जो कि पहले था 14 से 19 तक बहुत जबरदस्त था। उस टाइम गांव गांव शहर शहर लहर जैसा चल पड़ा था। उस टाइम लोग करीब करीब प्रण कर लिए थे कि हमारे गांव को या हमारे शहर को खुले शौच से मुक्त करना है। वो फोकस था उसमें खुले शौच से मुक्त, जो ओपन डिफेकेशन फ्री बोलते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं को शायद ध्यान नहीं होगा, 2014 में भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या जो है 60 करोड़ 600 मिलियन था और वो दुनिया के सारे खुले शौच करने का 60% था। लगता था कि भारत में ये जो काम है ये कभी बन नहीं पाएगा। और टोटल एक्सेस और यूसेज जो टॉयलेट की था शौचालय की, मान लीजिए 1947 जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके 2014 तक करीब 38% था। लेकिन 2014 से लेके 19 के अंदर देश खुले में शौच मुक्त हुआ। इसको मेंटेन करने का और आगे बढ़ाने का बहुत जरूरत है। और इसमें चार पी बोला जाता है, चार पी। पहला पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, जो प्रधानमंत्री ने दिया और सारे लोगों को, जितने बड़े बड़े लीडर सबको इन्वॉल्व किया, सारे मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मंत्री, सारे गवर्नर, सारे एमपी एमएलए और जितने बड़े बड़े सितारे हैं सब इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, सरकार ने काफी पैसा लगाए हैं सैनिटेशन के ऊपर, सफाई के ऊपर कभी इतिहास में इतना पैसा नहीं लगाया गया था, बहुत पैसा लगाया गया। तीसरा पी है पार्टनरशिप, सबको जुड़ा। ये सफाई जो है सबके काम हो गया, किसी एक का कोई मंत्रालय का काम नहीं है, सरकार की काम नहीं है। उसमें कॉर्पोरेट भी जुड़े, सिविल सोसाइटी भी जुड़े, मीडिया भी काफी जोर शोर से जुड़ा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उसमें दोनों का तालमेल रहा। लोकल गवर्नमेंट जैसे डिस्ट्रिक्ट और पंचायत और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े, सबका पार्टनरशिप से काम हुआ। लेकिन जो आखिरी पी जिसका की जिक्र आपने अभी किया, वो है पीपुल्स पार्टिसिपेशन या लोगों की भागीदारी। जैसे अभी जो स्वच्छता सेवा हो रहा है उसमें यूनिट्स आइडेंटिफाई किया गया है, जो सबसे चैलेंजिंग शहर में खास करके ज्यादातर जो जो जगह एकदम जिद्दी की तरह से वहां गंदगी है उसको सब मिलकर साफ करेंगे। साफ नहीं तो माफ नहीं, बात है निपटान वेस्ट का, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का निपटान की बात हो रहा है। और ये शहरी इलाका में ज्यादा चैलेंजिंग है, गांव में इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन और जैसे गार्बेज फ्री सिटी का एक रखा गया है टारगेट, 4805,000 करीब हमारा शहर और नगर है, तो वो गार्बेज फ्री कब होंगे और थोड़ी समय लग जाएगा। लेकिन काम निरंतर प्रयास है, क्योंकि जैसे गांव के लोग जितना जुड़ गए थे शहर के लोग शायद इतना भी जुड़ नहीं पाए हैं। और वेस्ट जो डिस्पोजल है या वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट प्रोक्योरमेंट, वेस्ट रिकवरी हुआ, वेस्ट को कन्वर्ट करना हुआ, निपटान करना हुआ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। और इसमें टेक्नोलॉजी भी आते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज भी आते हैं। और मुझे इसे लग रहा है कि जिस तरह का लोगों की इसमें जुड़ाव था 2014 से 19 फेज वन में, ये जुड़ाव का और एक बार थोड़ा सा इसका रिवाइवल होने का बहुत आवश्यक है। ओपन डेफिकेशन फ्री तो एक बार हो गया खुले शौच से मुक्त अभी, लेकिन उसके आगे पैरामीटर्स जोड़ जाता है कि क्या गांव में कचरे का निपटान हुआ है, क्या गंदे पानी के स्रोत बंद किया गया है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर वेस्ट का एक बार सेग्रीगेशन हो जाए तो फिर वो गोल्ड बन जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग और उसका वैल्यू उससे जो निकलना है बढ़िया से निकलता है, तो उसे वेस्ट टू वेल्थ निकलता है उसमें, क्योंकि वेस्ट जो है रिसोर्स है। ये सरकार ने खाली कहा नहीं है, ये तो अभी इंडस्ट्री और एंटरप्राइज धीरे धीरे आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना भरा हुआ है जिसको कचरा से कंचन बोला जा रहा है तो इसमें है। लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन है, चाहे इंडिविजुअल घर का हो या कोई बल्क जनरेटर्स हैं, चाहे जिसे रेसिडेंशियल सोसाइटीज हो, मॉल्स हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, वहां से कचरे जब निकलेंगे ना तो वो सेग्रीगेट होकर निकलना है। नहीं तो सेग्रीगेट होकर नहीं निकलता है तो फिर वो बीमारी और गंदगी और दुनिया भर का लैंडफिल, ये सब का आशंकाएं बढ़ता है और यही सब होता है।
0: आपने बताया कि आम जनता को जिस तरह से इसमें भागीदारी करने की जरूरत है, तो कार्यालय स्तर पर नहीं ऑफिस स्तर पर भी बहुत सारे हैं आजकल, चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की भी बात हमें करनी चाहिए, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो ई कचरा प्रबंधन, बहुत सारे जो कार्यालय हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के जो कार्यालय हैं उसमें भी जैसे कि सरकार ने कागज पे काम करने की बजाय वो जो ई प्रबंधन किया है या ई फाइलिंग का और ई ऑफिस का भी जो किया है, इससे कितना आसानी हुई है ये सारे कचरा निपटाने में?
1: बिल्कुल, आप देखिए ना, इलेक्शन में भी कुछ दिन काम किया था और इलेक्शन में जब बैलेट को निकालकर ईवीएम लगाया तो कितना कागज की बचत हुआ। और कागज बचत होने का मतलब इतना खाली कागज की बचत नहीं होता है, उसमें एनवायरमेंट, ट्री, गच्छ कटने का और कचरा, ये सबसे रियायत मिलता है। तो ऐसे ही सरकार का एक प्रोग्राम चला हुआ है, मिनिस्टर से मिनिस्टर लेके कैसे ई ऑफिस होगा, कैसे कागज की यूज कम होगा, कैसे पुराना चीज निकाल के उसको डिस्पोजल होगा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोला, क्योंकि आजकल तो हम लोगों का ऐसे हो गया ना, जैसे मोबाइल फोन बोलिए या लैपटॉप बोलिए या आईपैड बोलिए या टीवी बोलिए, जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इसको इतना चेंजेस आता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, नया नया वर्जन आता है, और लोगों का खरीदने का कैपेसिटी इतना बढ़ा है, लोग चेंज करते रहते हैं। जो पुरानी चीज है उसको अगर ठीक तरह से उसको डिस्पोजल नहीं किया गया ठीक जगह में जाके, उसको एक चैनल है जिस तरह से आइडेंटिफाई होकर जगह, ये खाली कचड़े में डाल देने से नहीं होगा, इसको निकाल के इसका एक साइंटिफिक तरीका है डिस्पोजल के लिए, नहीं तो पूरा टॉक्सिक हो सकता है, बहुत सारी चीज डेंजरस क्रिएट हो सकते हैं इसमें। और एक बात है, मेडिकल से जो वेस्ट होता है उसका भी एक पर्टिकुलर तरीके होते हैं डिस्पोजल होने का। एक बड़ा कंसेप्ट जो दुनिया में आया है, सरकार ने उसको बढ़ावा दिया है, नीति आयोग भी बढ़ावा देता है, ये RRR, ये वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, थ्री आर। मतलब आप चीजों की, जैसे पहले जैसे गांधी जी कहा करते थे कि अपना जरूरत के हिसाब से चीजें इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं कि स्प्लॉरिज कर रहे हैं आप, है ना। तो वो बोलते हैं कि रिड्यूस, आप जो सामान यूज करते हैं रिड्यूस, लेकिन आज को मेरे को लगता है गांधीवादी बातों को सुनने के लिए शायद, और रिड्यूस करने के लिए कंजम्पशन को, ये कंज्यूमर दुनिया में रिड्यूस करने का मैं तो ज्यादा आशावादी नहीं हूँ, क्योंकि देख नहीं रहा है। रीयूज रिसाइकल जरूर हो सकता है, आप कोई चीज को रीयूज करिए कोई तरीके से करके, उसका मिसाल बहुत है जो जिसमें जैसे कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में वो जिक्र करते हैं ये रीयूज रिसाइकल का, हर चीज रिसाइकल हो सकता है, हर चीज का रीयूज हो सकता है। तो हम हर चीज पर थोड़ा सा, जैसे मटेरियल सराउंडिंग हमारा है, कंज्यूमेबल आइटम्स है, चाहे हमारे घर में हो, दफ्तर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस जहां भी हो, हम थोड़ा सा उसको यूज करने के टाइम थोड़ा सोचें। आपने शायद सुना होगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, प्रधानमंत्री जी ने एक दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया है भारत के अगुवाई में, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उसमें लगा है कि जितना आप जुडिशियस कंजम्पशन के ऊपर बात किया गया
0: जी,
1: आप जो कंज्यूम करें तो उसका स्वच्छता के साथ लिंक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आज के तारीख में, क्योंकि ये सब दुनिया भर का चीज इस्तेमाल करके बाएं दाएं फेंकते रहिए या और भी खरीदते रहिए, तो फिर तो कचरों जाएगा कहाँ, कचरे तो रहेगा ना वहाँ, फिर उसको निपटान करने के लिए आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, उसमें भी खर्च होता है, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। रिड्यूस रीयूज रिसाइकल जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लग रहा है कि एक दुनिया को सस्टेन करने के लिए, अपना एनवायरमेंट के लिए भी बहुत काम देता है।
0: अच्छा, जैसे इस बार 1 अक्टूबर को 1 घंटा 1 दिन 1 साथ देश भर में स्वैच्छिक श्रमदान की बात है। हमारे यहाँ ना बहुत अच्छे अच्छे सार्वजनिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, समुद्र तट हैं, मंदिर परिसर हैं, और अभी तो बहुत सारे जो इस तरीके से जो धार्मिक स्थल भी बने हैं वहां पे स्वैच्छिक श्रमदान करने की बात करी, और आजकल का युवा भी जो है इसके बारे में काफी जागरूक हुआ है। आप देखिएगा, अगर कहीं बार हम समुद्र तट पर जाते हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो वहां पे कूड़ा फैलाने के प्रति जो प्रवृत्ति है वो कम हुई है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
1: बिल्कुल, ये तो एकदम मिसाल सेटिंग के बारे में बात हुआ कि एक मिसाल बनेगा, उसमें रिकॉर्ड्स भी बनते हैं, कई बार रिकॉर्ड्स बने हैं, इस बार होपफुली और भी बड़ा रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन एक सोच आइकॉनिक प्लेस प्रोग्राम शुरू हुआ था, देश में जितना बड़े बड़े जगह है जैसे तीर्थ और या भ्रमण की जगह जो है टूरिज्म सेंटर, उसी जगह में क्योंकि फुटफॉल, आपने जैसे अभी कहा फुटफॉल बहुत ज्यादा रहता है और उसमें फिर कचरा की संभावना होता है, गंदगी का संभावना होता है, लेकिन आजकल लोगों को जागरूकता इतना आया है और लोगों की तरफ से, जैसे सरकार या एजेंसीज की तरफ से इतना कोशिश होता है, पहले सैनिटेशन को सामने रखा जाता है। अब कुंभ का देखिए ना, उसके पहले तो स्वच्छ कुंभ इसको बुलाया गया था, उस टाइम कुछ भी करने के पहले सफाई का, जैसे शौचालय का, ड्रेनेज का, सीवेज का, सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट जनरेट होगा, जैसे करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोगों का जो चीजें यहाँ से निकलेगा वहां से निकलेगा उसका कैसे बंदोबस्त, वो पहले किया जाता है। आजकल छोटे छोटे मंदिरों में भी देखेंगे जो फूल जैसे चढ़ाया गया, प्रसाद चढ़ाया गया, उसके बाद उसको रिसाइकल किया जाता है, फूलों को निकाल के ड्राई फ्लावर्स या उसमें अगरबत्ती या और तरफ से जो कॉटेज इंडस्ट्री बनाया जाता है।
0: आज भी जो विभिन्न कार्यालय है, आज स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई है, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में भी यहाँ पे भी स्वच्छता, सभी कर्मचारियों की स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। ऐसा माना जा सकता है कि अब काफी लोग जागरूक होंगे इसके बारे में।
1: एक प्रण है, जैसे ये स्वच्छता एक दिन की बात नहीं है और स्वच्छता कोई जन्मगत आदत नहीं है, इस आदत को क्रिएट किया जाता है, ये एजुकेशन है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आज की तारीख में खत्म नहीं हो पाएगा, हमें इसको सस्टेन करना पड़ेगा, हमें उसको साथ साथ लेके अपने से अपने बच्चों का और आगे आगे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कचरे को निकालने का प्रक्रिया भी रोज होना चाहिए, सफाई को सिखाया जाता है, अगर सिखाया जाता है तो बच्चों को घर में सबको अपने अपने सफाई का आदत समाज में सिखाया जाएगा,
0: घर से समाज तक, समाज से जन भागीदारी, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। चलिए अक्षय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे

0: थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: Countrywide.

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। आंखों में पलने वाले पहले सपने अक्सर बहुत मासूम होते हैं। उनमें बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से ज्यादा छोटी छोटी खुशियां शामिल होती हैं। कभी कुछ बनने का सपना, कभी दूर कहीं घूम आने की चाह। समय के साथ सपनों का आकार बदलता है, लेकिन उनकी चमक मन में बनी रहती है। कुछ सपने पूरे होकर जीवन को खूबसूरत बना देते हैं, तो कुछ अधूरे रहकर भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

न जाने तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है कि एक बार नजर मिली तो दिल वहीं ठहर गया। अब यौवन भी जैसे तुम्हारे ख्यालों में ही बीत रहा है और दिल हर पल तुम्हें ही पुकार रहा है। तुम्हारी चाहत में ऐसी तड़प है कि चैन भी रूठ गया है। आलम यह है कि अब इस भीड़ में कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि तुमसे नैन जो लड़ गए हैं तो दिल भी बस तुम्हारा हो गया है।

अगर जीवन एक बगिया है तो हमारे रिश्ते उसमें खिलते अलग अलग फूल। कुछ फूल खुशियों की खुशबू देते हैं तो कुछ अनुभवों के रंग भरते हैं। कभी मौसम सुहाना होता है तो कभी आंधियां भी आती हैं, क्योंकि जीवन की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हर मौसम अच्छा हो, बल्कि इसमें है कि हम हर मौसम में खिलना सीखें।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हर बात पर रूठना, मनाना और छोटी छोटी बातों पर तकरार करना छोड़ दीजिए। जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, इसे शिकवों में क्यों गुजारना। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराइए, दिल की बातें कीजिए, कभी प्यार से हाल पूछिए, कभी बिना किसी वजह के अपने होने का एहसास दीजिए। क्यों ना आज तकरार छोड़कर बस प्यार की बातें की जाए।

प्रेम में दो लोग अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं, जहां खुशियां और सुकून एक दूसरे से मिलते हैं। इस दुनिया में ना कोई दौलत बड़ी होती है, ना कोई महल, बस साथ और अपनापन ही काफी होता है। हर पल खास लगता है जब उसमें अपने हम सफर का साथ होता है। इसलिए प्रेम की इस खूबसूरत रियासत में प्रेमी खुद को राजा और अपनी प्रेमिका को रानी समझता है।

रात की खामोशी में एक लड़की चांद से पूछती है, आज फिर मेरी आंखों से नींद क्यों रूठ गई? क्या तुमने उसे कहीं छुपा लिया है? चांद भी जैसे उसकी बेचैनी समझकर मुस्कुरा देता है। शायद नींद किसी ने चुराई नहीं, बस किसी की याद ने उसकी पलकों पर डेरा डाल लिया है। और अब चांद से यही सवाल है, बताओ हमारी नींद किसने चुराई?

आज के छाए गीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।